0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टू रियली इंटेलिजेंट पीपल जो बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. टेक फॉर इंस्टेंस माई बेस्टी एंड दिस वन गाय हु इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्स जिसे मैं कल पहली बार मिली. तो हम तीनों कैफे में बैठे हुए हैं और वो कहती है यार मैं ना बहुत बोरिंग इंसान हूँ. और वो कहता है एग्जैक्टली प्लस वन मैं भी बहुत बोरिंग इंसान हूँ. वो कहती है मुझे घर पर रहकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. He says, ditto, मुझे भी घर पर रहकर खाना बनाना अच्छा लगता है. She says, अगर मुझे वेकेशन का चांस मिले ना मैं तो बस बीच पर बैठ के किताबें पढ़ूं. He says, same for me, plus one that too. And I wanted to say कि क्या तुम दोनों अंधे हो या बहरे हो या तुम्हारी IQ सच में जीरो से कम है क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रही हो मेड फॉर ईच अदर. सो आई टोल्ड देम तुम कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं करते कल. Why don't you guys like not hang at a cafe and do something fun like a cook-off? तो तुम दोनों सेम इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ किचन में और एक दूसरे को बिना बताए कि तुम क्या बना रहे हो दो अलग अलग चीज़ें बनाओ एंड देन एन्जॉय व्हाट यू मेक. एंड दे वर लाइक या दैट साउंड्स ग्रेट एंड ऑल. और मैं मन में सोच रही हूँ कि बेटा जब किचन में तुम दोनों कुक ऑफ कर रहे होगे ना देयर विल बी मोर देन फूड दैट इज कुकिंग. एंड नाउ आई एम होपिंग कि जब इनका ये किचन कुक ऑफ हो दे रियलाइज कि किचन में खाने से और भी ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं. ऑन दैट नोट अगर आपने कभी अपने पार्टनर के साथ एक किचन कुक ऑफ किया है आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो गो अहेड डार्लिंग डू व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

करने सूरत से सीधा अहमदाबाद आया खेलने के लिए संग डांडिया भी लाया Tell me baby girl what is your name जी पहली नजर में हो गया है

चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर

अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो यू विल नो कि रिसेंटली मैं एक डेट पर गई थी जहां पर आई एक्चुअली लाइक दिस गाय और अभी भी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ वेयर आई स्टैंड विद हिम और मुझे उससे क्या चाहिए. मे बी आई एम काइंड ऑफ कमिटमेंट फोबिक राइट नाउ और मैं एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ बट मुझे उसकी अटेंशन अच्छी लगती है. अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश करी थी कि वो कितना इन्वेस्टेड है इन स्पेंडिंग टाइम विद मी. और इसका एक तरीका ये होता है जब सामने वाला इंसान आपके साथ कोई हैंग आउट करने का प्लान बनाए. अभी तक हम दोनों ने दो बार हैंग आउट किया है, दोनों बार प्लान मेरा था बट हमने ना एक 6-7 घंटे इकट्ठे आसानी से स्पेंड करे हैं. बट यू नो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, एज मच एज मैं मरे जा रही हूँ प्लान बनाने के लिए, मैं प्लान नहीं बनाऊंगी. डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन ही मेक्स अ प्लान मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं. एंड एज मच एज मुझे ये मार्कर बहुत इंटेग्रल लगता है टू फिगर आउट कि आपको सामने वाले बंदे पर टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आप भी मुझसे ये टिप ले लो. अगर सामने वाला इंसान आपके साथ प्लान्स बना रहा है एक्टिवली देन दे आर इंटरेस्टेड. नहीं बना रहा है, यू आर दी ओनली वन चेजिंग आफ्टर देम. किसी के पीछे भागने की क्या जरूरत है जब हम खुद में ही इतने कंप्लीट है ना. सोचो इसके बारे में एंड यू फाइंड आउट दैट इट्स एक्चुअली ट्रू. एंड ऑनेस्टली पता है मुझे क्या लगता है कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड.

0: Mirchi. It's hot.
1: Let's go crazy.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोज। The song features Elvis Yadav. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10। स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर
2: 10। हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: अनाउंस आडी सुन सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ऑन गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop songs of the week. Bandi ka naam hai RJ Kaneka. Abhi ke abhi jao Instagram pe. फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKaneka ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाए, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने या एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJKaneka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJKaneka पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJKaneka ऑन इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर। गाने का नाम है बैंगल्स। 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे, अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड, काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचें. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy For You by Coer this week on our Gana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट RJ Kanek पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश और कारण, हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 3।

0: किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
1: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। ट्रस्ट मी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेम्बर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माई डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड।
3: अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
4: मैं बिल्कुल, मैं इस फीलिंग को समझता हूँ। जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और एआर रहमान, तब एआर रहमान भी नए नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Karing on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खा का गाना. It's a Cook Studio भारत song. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, जल्दी जल्दी फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना तो बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई माइट फीचर योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है। इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ। इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज दीवा।

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दोस सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं, जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बन था, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाहकर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane ka naam Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ke yehi wale gaane, you know, which makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.
1: नंबर 1.

Rana, Indie Top 10, Kanika ke saath, on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूं विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
0: नंबर 20।

इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: स्लिपिंग डाउन बाय वन पोजिशन, अरिजीत सिंह का गाया तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन अपनी मेमोरीज की हार्ड ड्राइव से एक ऐसा चैप्टर ढूंढ के निकाल रहा हूँ दैट इज गोना टेक यू बैक टू योर फ्रेंड्स एंड टाइम। इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा गोवा जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंड ट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद
1: वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
2: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी कैसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
1: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. नंबर 5.

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है। एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंडट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूँ। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं। क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। से दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन।
2: नंबर 4

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

my God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2. Even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen, uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था. कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Sheesh.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mitchie, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

Mirchi, it's hot. When feel free.

बरसात है। आज है।

मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। एंड अभी ये शो शुरू हुआ है, सो व्हेन यू आर ड्राइविंग टू वर्क, मेकिंग दैट बस 5 मिनट और वाला ब्रेकफास्ट, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि आज तुम पूरी तरह प्रोडक्टिव रहोगे जबकि तुम घर से काम करने वाले हो, वेलकम। आज का रूल काफी सिंपल है, नो बोरिंग मॉर्निंग्स। थोड़ा सा बॉलीवुड वाला ड्रामा, थोड़ा सा देसी गॉसिप, थोड़ा सा म्यूजिक और काफी सारी मिर्चीदार एनर्जी टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लॉट मोर मिर्चीदार। बिकॉज ऑनेस्टली यार, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लाइफ में मिर्ची बनाए रखना जरूरी है। और अगर तुमको मेरी बकबक पसंद आती है तो जल्दी से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, 9033647244। अभी के जाना नहीं, मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मग सनि धनि सगमा मग सनि धनि सगमा।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो अब चेक करते हैं कि आज मदर नेचर का मूड कैसा है। अरे भाई, वेदर चेक करने वाले हैं। अभी फिलहाल कम्यूट करने वाले हो तो एटलीस्ट वेदर को समझ के जाना जरूरी है। राइट नाउ इट्स अराउंड 71 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली सनी है, लेकिन फील होने वाला है अ लिटिल वार्मर 73 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। लेकिन होल्ड ऑन, सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक के बीच में स्काई जो है वो थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी हो जाएंगे, और अराउंड 3 बजे के आसपास क्लाउड्स थोड़े से और सीरियस होकर आ सकते हैं तुमसे मिलने के लिए। मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है अराउंड दैट टाइम। टेम्परेचर वाइज आज का रेंज देख लेते हैं, 71 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट तक है। फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 72 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। और गुड न्यूज भी है मेरे पास, आज रेन का कोई चांस, कोई सीन नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में प्रेसिपिटेशन वॉज 0 एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में भी प्रेसिपिटेशन इज 0 एक्सपेक्टेड। मतलब कि आज अम्ब्रेला को अपनी छुट्टी मनाने के लिए घर पर छोड़कर जाओ। कल इट वॉज 72-87 डिग्रीज फारेनहाइट, सो टुडे का हाई है 86 डिग्रीज फारेनहाइट, विच इज ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडे। बेसिकली वेदर कह रहा है मैं ज्यादा चेंज वेंज होने के मूड में नहीं हूँ, तुमको जो करना है वो कर लो। तो करना तुम्हें क्या है, सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाना है, SPF 50++ वाला। Of course, you should carry your water bottle with you if you're going out. घर पर हो तो भी plenty of water पियो and साथ में layer के player बनो to feel smart in comparison to the weather. Umbrella, आज रहने दो यार, उसे घर पर छुट्टी मनाने दो। मैं हूँ ब्रिजिला तुम्हारे साथ में। तुम्हारी छुट्टी अगर नहीं है, मुझे सुनते रहो, मिर्ची mornings और मिर्ची दार हो जाएंगी। मुझे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। मिलती हूँ तुम्हें अगले आवर में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची आवक का 3, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले बिल गेट्स की डॉटर फीबी गेट्स की शॉपिंग स्टार्टअप फिया इज फेसिंग स्क्रूटनी ओवर एन अलेजेड प्रैक्टिस कॉल्ड कुकी स्टफिंग. बेसिकली ऑनलाइन सेल्स का क्रेडिट ऐसे सेल्स के लिए लेना जो आपने एक्चुअली ड्राइव नहीं की. रिपोर्ट से द अलेजेड कंडक्ट कुड पोटेंशियली लीड टू सीरियस फेडरल चार्जेस. राइट नाउ दीज आर एलिगेशंस एंड नो कन्विक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. एंड नंबर टू पर एन एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग स्टोरी कमिंग इन फ्रॉम यूएसए. अ 17 ईयर ओल्ड हैज बीन चार्ज्ड इन द डेथ ऑफ हिज मदर and 14-year-old brother. Authorities say the teenager had allegedly searched online about violent fantasies involving his family before the killings. He was arrested after a manhunt. And lastly, cricket say England Test captain Joe Root has scrapped the team's midnight curfew ahead of the Pakistan series. His reasoning: players are grown adults and should take responsibility for their own decisions. And that's it for Mirchi Awaka 3 with me Priscilla. Connect with me Insta or X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned, stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब स्पोर्ट्स की थोड़ी बातें कर लें। फर्स्ट अप हॉकी। अहेड ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026, फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PR सृजेश सेज इंडिया शुड बी एमिंग फॉर अ टॉप 4 फिनिश एट मिनिमम। उनके वर्ड्स में एनीथिंग बियॉन्ड दैट वुड बी अ बोनस। इंडिया इज इन पूल डी अलोंग साइड इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड वेल्स। सो कॉम्पिटिशन काफी टफ तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है हमारी। बेसिकली सृजेश का मैसेज है, पहले टॉप 4, फिर देखेंगे ट्रॉफी कितनी दूर है। एंड आई थिंक ही इज राइट इन सेइंग दैट। एंड अब हॉकी स्टिक से चलते हैं थोड़ी स्पार्कलिंग डायमंड्स की तरफ। तनिष्क जो है वो लेकर आए तुम्हारे लिए फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। यू कैन गेट अप टू 25% ऑफ डायमंड की वैल्यू पर एंड मेकिंग चार्जेस पर। एंड अगर तुम्हारे घर में पुराना गोल्ड है ना, चाची दादी नानी ताई किसी का भी, उसको लेकर जाओ वहां पर। एंड अगर वो 18 कैरेट से ऊपर है तो तुम्हें 0% डिडक्शन मिलेगा एक्सचेंज कराने पर। एंड तुम और भी बहुत सारा गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हो, बहुत सारे मजे लूट सकते हो फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स में, विच इज हैपनिंग एट तनिष्क। ऑफ कोर्स कंडीशंस आर अप्लाइड, जाकर चेकआउट करना बनता है। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑल्सो चेकआउट माई सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग ईस्ट कोस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हारे बर्थडे स्क्वाड के नाम बताने वाली हूँ मैं भी, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तुम्हारी कॉफी हो स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा वाईफाई बिहेव करे एंड तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का शादी कब करोगे टाइप का मैसेज ना आए। एंड नाउ लेट्स सी हु एल्स वाज बोर्न ऑन दिस वेरी डे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री वी हैव एनी ओकली, द लेजेंडरी अमेरिकन शार्प शूटर, बोर्न इन 1860। देन वी हैव गॉट फिडेल कास्ट्रो, फॉर्मर लीडर ऑफ कुबा, हु वाज बोर्न इन 1926। एंड जानेट येलेन, ये इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है। एंड बॉलीवुड लवर्स, द लेजेंडरी वैजयंती माला, एक्ट्रेस एंड क्लासिकल डांसर, हु वाज बोर्न इन 1936। एंड टुडे आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द आइकॉनिक श्रीदेवी जी, बोर्न इन 1963। हर परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू टू लिव ऑन विद जनरेशंस ऑफ फैंस। एंड हॉलीवुड में वी हैव गॉट सेबेस्टियन स्टैन, यस मार्वल फैंस, आज बकी बांस का बर्थडे है, हु वाज बोर्न इन 1982। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, Remember, you're in very good company. और good company से याद आया, मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ अगले एक और घंटे के लिए। फिलहाल तुम जाकर मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, यानी कि MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Priscilla with you on Mirchi Mornings और अब time है gold and silver का rate update जानने का।
1: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,400, $4,400 के mark पर वापस gold पहुंच गया है और market aggressively upward trend पर है। इससे पहले gold के prices upward trend पर जाएं, आप आइए 22 carat gold jewelry, 18 carat colorless diamond jewelry, GI certified natural diamond जो platinum की ring में set हो। Raj Jewels की यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट पे जीरो डाउन पेमेंट के साथ बिना किसी हिडन फी बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक कर सकते हैं। वो खूबसूरत सी ज्वेलरी आज घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी के। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर लेके जाए और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना इंटरेस्ट के पैसे दें और गोल्ड का प्राइस आज लॉक करें ताकि जब 9 महीने तक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा हो तो वो बेनिफिट आपके साथ आपके गहनों में आपके गोल्ड में आपके पास रहे। आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें।
0: And there you have it, gold and silver का लेटेस्ट रेट अपडेट exclusively on Mirchi Mornings. मेरा नाम है प्रिसला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033-6472-44. अभी मिर्ची दार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा।

हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले एआई कंपनी एंथ्रोपिक इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स टू अक्वायर इजरायली एआई स्टार्टअप डीकार्ट एआई फॉर अराउंड $6 billion. इंटरेस्टिंगली एनवीडिया हैड रिपोर्टेडली आल्सो बीन इंटरेस्टेड व्हाइल अमेज़न एंड नेब्यूस आर अमंग द अदर कंपनीज लुकिंग एट द स्टार्टअप। बट इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर ये है, द डील इज इन फाइनल येट एंड टॉक्स कुड स्टिल फॉल थ्रू। नंबर टू पर, द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047, अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर how the capital could develop over the next couple of decades. The plan involved consultations with agencies including the MCD, NDMC, Delhi Jal Board, DMRC, NCRTC and residents groups. And now the plan will go to the Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification. And lastly, this one is especially for our Desi NRIs ordering groceries back home for their family members. Maharashtra FDA Chief Tukaram Munde has asked consumers to report quick commerce platforms like Blinkit and Zepto if food products do not show essential information like manufacturing or expiry date. So if your relatives in India are ordering groceries online and something important is missing from the label, don't just WhatsApp the family group, report it to the authorities. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisila tumhare saath mein on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

बरसात है। आज रात

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनने वाले हो राशि जोन का पहला पार्ट, एरीज से लेकर वर्गो तक।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, अनएक्सपेक्टेड टास्क आ सकते हैं, सो पैनिक नहीं करने का, पहले चाय पीने का, फिर स्ट्रेटजी बनाने का, क्रिएटिव चीजों में एनर्जी लगाओ, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 7। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मूड थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो तो बॉडी को मूव करो, वर्कआउट करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, स्टेबल कंफर्ट इज योर वाइब टुडे। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, कुछ नया सीखने का चांस मिल सकता है, बस फिटनेस रूटीन का कल से पक्का वाला बहाना मत बनाना। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, लव्ड वंस के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, बट होम एंड वर्क के बीच बाउंड्रीज भी बनाए रखो, हर प्रॉब्लम का कस्टमर सपोर्ट तुम नहीं हो यार। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस फुल ब्राइटनेस पर है, बस बॉडी को इग्नोर मत करो, टेंशन या माइनर एक्स हो तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ यार। लकी कलर फॉर यू इज एम्बर, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस योर लेजेंडरी अटेंशन टू डिटेल कैन ब्रिंग स्टेडी प्रोग्रेस, आज परफेक्शन के चक्कर में प्रोग्रेस को हॉस्टेज मत बनाना। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 6। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 1 विद मी प्रिसिला। और अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033 6472 44। Stay tuned and stay hot.

0: ऑलराइट, राजश्री's own part 2 इज हियर। मैं बोलूं तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राजश्री's own।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, अपने सराउंडिंग्स में ब्यूटी और बैलेंस नोटिस करो। सिंपल पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस लिंगरिंग स्ट्रेस को हल्का कर सकती है। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 3। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टास्क्स में डीप फोकस लाओ और क्वाइट मेडिटेशन से माइंड को सेंटर्ड रखो। आज मल्टी टास्किंग से ज्यादा मेन टास्किंग की जरूरत है। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एडवेंचर मोड ऑन करो और जो पुराने या फाइनेंशियल अरेयर्स अटके हुए हैं ना, उनमें मूवमेंट हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज प्रोसेस दैट पेमेंट। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, फीलिंग्स और एम्बिशन दोनों काफी स्ट्रांग रहेंगे आज। गट इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो एंड क्विक बोल्ड डिसीजंस लेने से बिल्कुल मत डरो। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल, लकी नंबर इज 1। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। आर्टिस्टिक साइड को लीड करने दो यार, हर डिसीजन स्प्रेडशीट से नहीं लिया जाता। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 10। पाइसीज यानी कि मीन राशि, इंट्यूशन टुडे इज सीरियसली स्विच्ड ऑन। इनर वॉइस को लिसन करो, पेशेंस रखो और ऑप्टिमिज्म का साथ बिल्कुल मत छोड़ो आज के दिन। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स योर राशि's own पार्ट द्वितीय। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरे साथ ही बने रहो ना यहाँ पर भी और सोशल मीडिया पर भी। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जस्ट लाइक दैट मिर्ची मॉर्निंग्स कम्स टू एन एंड. तुम्हारे साथ मॉर्निंग ड्राइव करना वॉज एन एब्सोल्यूट वाइब. थोड़ा सा म्यूजिक प्ले किया, थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ा सा देसी तड़का भी मारा. बेसिकली चाय या कॉफी के बिना चाय या कॉफी की फीलिंग आ जाती है तुम्हारे साथ. नाउ प्रिसिला, एंड बिफोर आई साइन ऑफ, हियर समथिंग फॉर ऑल माई देसी लिसनर्स आउट देयर, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिट कैरी करना बहुत मजे का लगता है. सेलिब्रेट करो आजादी विद ईडन रोब एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएस. ऑगस्ट 6 तारीख से 16 अगस्त तक एंजॉय करो फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन वुमेन एंड किड्स. साथ में एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल रहा है फ्रेग्रेंसेस पर. और क्या चाहिए यार, ईडन रोब फ्लैगशिप स्टोर इज इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी. या फिर शॉप करो नेशन वाइड एट usedenrobe.com. That's us.edenrobe.com. So अभी फिलहाल तुम प्लान कर रहे हो टू ड्रेस अप फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, या फिर हेडिंग टू अ देसी गेट टुगेदर फॉर दिस वीकेंड, या फिर सिंपली तुम्हें घर की याद में नए कपड़े खरीदने हैं, ईडन रोब हैज गॉट यू कवर्ड. एंड हे, आई हैव गॉट यू कवर्ड. बजाने वाले मैं तुम्हारे लिए मिर्चीदार हॉटीज यानी कि बैंगर्स अभी के अभी. लेकिन बिफोर आई डिसअपियर टिल टुमारो, यू डोंट डिसअपियर ऑन मी. फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी के लिए टाटा बाय बाय है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: बचपन में ना जहाँ कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना. हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विन्स भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे ही थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स।
4: क्योंकि ये कौन बोला?
5: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
3: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है, which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला? मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिडडे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ वाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने डीडी वन पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो कि इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। Well, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहुना प्यार है। एंड हे बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमा कर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर, और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहोना प्यारे दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एज अ काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं, उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसे कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ हर रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही है, विच वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट वॉज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था। मैंने कहा ना, काजोल सिंस देन टिल नाउ हैज बीन स्वीटी, द आउटगोइंग बोल्ड एंड मॉडर्न, एंड दैट इज हाउ वी लव काजोल। लाइक स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो। हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हैं हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी, वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।
2: मिर्ची।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर मीठी सुपारी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है, जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था, और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना, तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था, और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे, और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी, और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही, और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना। लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चन की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।

ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वही ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस जमाने के गानों को, उस जमाने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया, और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो, एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल, दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी, द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम, और इसमें थी अरुणा ईरानी। ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ? मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: चतुरा या घोड़ा या चतुरा या घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो NN सिप्पी जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म दैट हीज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त NN सिप्पी ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एन एन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वॉज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वॉज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफकोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं, मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, ये एक हॉरर फिल्म होगी, फिल्म का नाम था फिर वही रात, तो ये तुम डायरेक्ट कर लो। अब पता नहीं, डैनी जी को शायद डायरेक्शन इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने और कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, ही वेंट बैक टू एक्टिंग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इस फिल्म की बातें होती रहेंगी, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे, उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट, दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

इसको रिलीज किया गया था, राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज द ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे, यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में। वेल, डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15 अगस्त 1980 को

12 साल लग गए इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता, ऑल ऑफ दैट। दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको वो डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो वो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर उनके सेट पर, एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ, शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप, बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएन सिप्पीज फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है, अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे अपश्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब। Now what happened was कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है, 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें। किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं एंड यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए एनएन सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड Right opposite none other than Kaka, yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe, main hoon Shreya, come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो, लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड किम, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी दी एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहे। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

पुरानी जीन्स पे हाफ और श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, याने लेट्स हिट द हाईवे। वेल, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो, क्योंकि वो है रवि साहब की आवाज है। मुझे जाने दो, अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊंगी। बट यस, इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है, जहाँ आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो, रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। सो फॉर दैट, फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। ऑन दैट नॉट, गुड नाइट।

0: में गाओ है रेला हूँ चपाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: भाई इस फिल्म में ना तो कोई टिपिकल विलन था और ना ही कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और कसम से 20 साल पहले जब ये फिल्म आई थी ना, तो इसको बहुत सारा बैकलैश मिला था। इनफैक्ट करण जौहर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही वॉज रियली रियली डिप्रेस्ड आफ्टर द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट फ्रॉम द पीपल। मैं बात कर रही हूँ साल 2006 में रिलीज हुई थी।

0: भाई इस फिल्म में ना तो कोई टिपिकल विलन था और ना ही कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और कसम से 20 साल पहले जब ये फिल्म आई थी ना, तो इसको बहुत सारा बैकलैश मिला था। इनफैक्ट करण जौहर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही वॉज रियली रियली डिप्रेस्ड आफ्टर द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट फ्रॉम द पीपल। मैं बात कर रही हूँ साल 2006 में रिलीज हुई, बैकलैश मिला था। इनफैक्ट करण जौहर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही वॉज रियली रियली डिप्रेस्ड आफ्टर द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट फ्रॉम द पीपल। मैं बात कर रही हूँ साल 2006 में रिलीज हुई।

0: It's hot.
1: मिर्ची, it's hot.
2: जय कन्हैया लाल की।

Mirchi. It's hot.

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आते, कोरियोग्राफर को मैं ही।

0: Mitchie. It's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा